इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: श्रोत्यो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो. दोस्तों, क्या आपने कभी उस पतंग को देखा है जो हवा के सहारे उड़ते उड़ते नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती है? जमीन पर खड़े लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि पतंग को भी शायद यह लगने लगता है कि अब वह इस धरती को धूल से बहुत ऊपर उठ चुकी है. लेकिन जैसे ही उस पतंग की डोर किसी पेड़ में उलझती हैं या हवा का एक विपरीत झोंका आता है, वहीं ऊंची उड़ने वाली पतंग सीधे जमीन की कटीली झाड़ियां और कीचड़ में आ गिरती है. ऊंचाई पर पहुंचना जितना मुश्किल होता है, वहां से गिरना उससे कहीं ज़्यादा आसान और दर्दनाक होता है. अध्यात्म और साधना के रास्ते पर भी सबसे बड़ा खतरा यही होता है. जब थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा ध्यान या समाज में नाम मिलने लगता है, तो इंसान खुद को बहुत बड़ा पहुँचे हुए संत या सिद्ध मानने लगता है. कबीर साहब आज हमें साधना के इसी सबसे बड़े भीतरी खतरे यानी ऊंचाई से पतन की प्रति सावधान कर रहे हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र. कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश. कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश, उहां ही ते गिरी पड़या मन माया के पास. कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश. कबीर मन पंछी भया.

0: आवाज।
1: श्रोताओं, कबीर साहब मन के एक सूक्ष्म अहंकार और उसके धोखे को उजागर करते हुए कहते हैं, कबीर मन पंछी भया, साधना भजन और एकाग्रता के बल पर यह जो तुम्हारा मन था, यह एक पंछी यानी पक्षी की तरह हल्का होकर उड़ने लगा, बहुतक चढ़ा आकाश, और यह उड़ते उड़ते बहुत ऊंचे आकाश यानी समाधि ज्ञान और ध्यान के ऊंचे शिखरों तक पहुंच भी गया। इसे लगा कि इसने संसार और वासनाओं को सदा के लिए पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन फिर क्या हुआ? अगली पंक्ति में कबीर एक अत्यंत मार्मिक और चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। वहाँ हीते गिरी पड़ा, उसी परम ऊंचाई से जहाँ वह खुद को सुरक्षित मान रहा था, यह मन सीधे नीचे गिरी पड़ा, यानी औंधे मुँह गिर पड़ा। कहाँ गिरा? मन माया के पास, वापस उसी नश्वर माया यानी उस मान प्रतिष्ठा लालच वासना और अहंकार के पुराने दलदल में आकर फंस गया। यह दोहा योग के स्थान्युपन्न मंत्र समस्या कारण पुनर्निष्पर्शन पतंजलि योग सूत्र के नियम की व्याख्या करता है। जब साधक की चेतना ऊपर उठती है तो उसके भीतरी सिद्धियां, सम्मान और मैं ज्ञानी हूँ का एक बहुत बारीक अहंकार पैदा हो जाता है। जब तक अहंता की जड़ पूरी तरह नहीं कटी होती, तब तक माया कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी ऊंचाई पर घात लगाकर बैठी रहती हैं। कबीर समझा रहे हैं कि ऊंचाई पर पहुंच जाना ही मुक्ति नहीं है, उस ऊंचाई पर निरंतर निरहंकार और सजग बने रहना असली परीक्षा है। एक पल की लापरवाही या अपनी साधना का घमंड होते ही वह मन पक्षी से फिर वासनाओं की जमीन पर आ पटकता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद के भीतर इस सूक्ष्म अहंकार को टटोलिए। जब हम चार अच्छी बातें सीख लेते हैं, थोड़े धार्मिक हो जाते हैं या कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तो क्या हमारे भीतर दूसरों को तुच्छ समझने का भाव नहीं आने लगता? कबीर हमें बताते हैं कि हमें लगता है कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं और बाकी दुनिया अज्ञानी है। यही वह सूक्ष्म माया है जो हमें आकाश से जमीन पर गिरा देती है। आज कोशिश कीजिए अपनी साधना में विनम्र बने रहने की, ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने पैर जमीन पर रखिए। यह मत भूलिए कि जो कुछ भी मिला है वह सद्गुरु और उस परमात्मा की कृपा है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं। जब आप पूरी तरह सरल और निरंकारी होकर उस राम नाम की शरण में रहेंगे तो आपका यह मन कभी गिरेगा नहीं, बल्कि उस अनंत आकाश का ही रूप हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
2: आपन ट्यून केला है रेडियो मन भावन 90.8 FM अलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
3: एपिसोड नंबर 56। बात तथागता आरोपकर्ताओं के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ उदाहरणों के साथ नमूना पेश करते हैं। विपश्यना के कारण गति मंद होती है और वे अपने ही सीमित दायरे में रहते हैं। विपश्यना बाधक बनी रहती है गति और प्रगति में, परंतु यह दोष विपश्यना का है या गलत विपश्यनकर्ता का, यह नहीं देखा जाता विवेक से, न देखा किसी ने भी। सच तो विपश्यना यानी एकाग्रता, ज्ञान प्राप्ति की समाधि। एकाग्रता पूर्ण समाधि से ज्ञान प्राप्ति होती है और विचारों का विस्तार होता है, ऐसी सृजनात्मकता है विपश्यना में। विपश्यना ध्येय नहीं है, साधना है, मार्ग है। बहुत से यह भूल जाते हैं। विपश्यना से साध्य होती है कर्मकांड विरहित सम्यक समाधि, जिसमें होती है विवेक की चिकित्सा और प्रज्ञाशील करुणा। बाबा साहब अंबेडकर करते थे निरंतर 18 घंटे अभ्यास या 24 घंटों में से 21 घंटा अभ्यास। यह ज्ञान साधना की एकाग्रता, यह एक तरह की विपश्यना ही है। इनमें से ही विकसित हुई सम्यक समाधि और दुखितों वंचितों के आंसू पोंछने की कार्य प्रवण करुणा विस्तार पाती रही बाबा साहब की। बाबा साहब शील को अत्यधिक महत्व देते थे। उनके चारित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी निंदकों की भी नहीं हुई आज तक। बाबा साहब की इस एकाग्रता में कर्मकांड नहीं, ना ही अंधश्रद्धा। कुछ नमूने विपश्यना में बैठते हैं आंख मूंदकर और मांगते हैं कल्पना के देवी देवताओं को, मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, हे ईश्वर मुझे बंगला दे दो, हे ईश्वर मुझे गाड़ी दे दो, हे ईश्वर मेरी यह बीमारी दूर कर दो। यह लालच भिखारी वृत्ति विज्ञान से कोसों दूर है। वैसे तो विशिष्ट प्रकार की देखने की दृष्टि से, निरीक्षण से ये पृथक होती है। इसी कारण ये नमूने बैठते हैं विपश्यना में परंतु करते हैं कर्मकांड, बनी रहती है अंधश्रद्धा, बन जाते हैं धर्मांध। ऐसे नमूने विपश्यना के साधक कैसे होंगे? विपश्यना को नाम रखने वाले करते नहीं विपश्यना कभी भी। उनमें नहीं होती एकाग्रता, निरीक्षण के अभाव में बिना देखे बिना जांच पड़ताल किए केवल अधिकार पाते हैं टीका टिप्पणी निंदा करने का अविवेकी भाव से। बा तथागता ज्ञान संवर्धनार्थ तथा भय वृत्ति को दूर करने हेतु तूने निरीक्षण से एकाग्रता के लिए कहा। चित्त एकाग्रता के लिए श्वास का बड़ा महत्व होता है। श्वास नाक से अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यह प्रक्रिया निसर्ग नियम के अनुसार संपूर्ण जीव सृष्टि में निरंतर चलती है। हवा आना और जाना, इस प्रक्रिया के साथ देखना क्रिया जोड़ने से शुरू होगी क्रिया एकाग्रता की अर्थात समाधि। परंतु श्वास लेना और छोड़ना के अतिरिक्त देखने की क्रिया होती ही नहीं, इसीलिए अभाव है एकाग्रता का, इसीलिए निर्माण होता है अज्ञान, अंधापन और भयग्रस्तता बेसावध वृत्ति के कारण। नासिका द्वारा शरीर में पहुंचने वाली हवा ऑक्सीजन सप्लाई करती है, प्रत्येक पेशी इसी कारण जीवित रहती है। जिन पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता वह पेशी रोग धारण कर लेती है कर्क रोग सम। शरीर में प्रविष्ट प्रत्येक श्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है शरीर की चेतना के लिए, जीवित रहने के लिए। इस श्वास का निरीक्षण यानी शरीर के प्रत्येक बदलाव की नोन ज्ञानवर्धक। शरीर बना है पेशी पेशी के समुच्चय से और पेशी कण कण से, अणुरेणु से, परमाणु से, कायानुपश्यना शरीर का तटस्थता से संपूर्ण निरीक्षण आकलन के साथ शरीर के बदलाव की संवेदना कैसी होती है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण एकाग्रता समाधि साधना से ज्ञात होता है। इस एकाग्रता का बोध अनापान सती से यानी श्वास।
0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आपली मानसर।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे, ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over.
1: And what happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: Whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of.
1: Then the past becomes my present. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार-बार कहते वो जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं, तो वो past ना रहकर, वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया, तो मेरा आज का दिन भी. सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इन टू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माई प्रेजेंट. तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना. पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट. ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहाँ हम ढूंढते, वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है. सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर. आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं. तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए. हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे. तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हेयर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में. जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट. इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ. इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना. सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM,
0: कि वहां तब क्या हुआ था.
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03, एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है, एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए. अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: लेकिन
1: ऐसी
0: अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: वी ऑलरेडी एंटिसिपेट द मोर लॉसेज. इस मोमेंट में ताकत है हमारे अंदर सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में फियर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम मेडिटेशन करते हैं, वाई डज इट बेनिफिट. मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अपने माइंड की, यू नो, स्पीड को, थॉट्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया है.
1: इफ एनी वन ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें. एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो, चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
0: पास से हम
1: सीखते हैं. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है. पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वी विल टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family, so it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: Actually, वो हमेशा ही हमारा present बनता जाता है.
1: बनता जा रहा
0: है. जितना ज़्यादा हम
1: absolutely. But अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू, एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज दैट.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है, अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू, यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी
1: you know, कहीं बहुत वो ऐसे ऐसे, अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बींग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ, वट एम आई डूइंग, द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. What am I trying to say? और वो उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. Futile. अब कई बार हम कहते, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. If I keep reminding myself, तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? That also we need. सीखने को जरूर मिलता, but provided हमने उसको right perspective में लिया है. अगर मेरे साथ कोई situation हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो. अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं, वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं, वो एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं, तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know, if I you know what I think? If I understand them well, then I will be safe. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है, एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, it's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या, कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करे, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ, ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? एक लर्निंग हो सकती है, कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है. दिस इज आवर वोकैबुलरी. तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट. नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट. सी ब्रिंग द फोकस टू माई सेल्फ. आने वाली हैं बहुत सारी बातें आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स. अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर. कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का. आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस. हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड. सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया. सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग. वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई. अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स. अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं. यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती. तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता. तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी. एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा. यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे इंसल्ट. तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा. लेकिन past repeat ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: delete. You will have to forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा. क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो already repeat हो चुका. जैसे आपने शुरू में ही कहा, past की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो repeat हो गया ना, the past has repeated itself. अगर suppose मैं hurt हुई थी तभी या dejected feel किया, अब मैं जितनी बार उसको repeat करती हूँ, I again experience hurt, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न, वो और भी ज्यादा कड़क, और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया. तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता. एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी. तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूंगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूंगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूंगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, कोई एनर्जी मुझे वापस आएगी. एंड देन आई से देखा, उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से

0: सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता
0: और
1: है,
0: हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा।
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी. अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस
0: पर
1: मूवी
0: वो
1: को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन, हम
1: नहीं
0: तो वहां
1: बट
0: पे
1: यू
0: भी नहीं
1: नो इट
0: रुकते।
1: ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया. तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माई फ्यूचर. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट, कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा
0: वो
1: वो
0: मेरा
1: थॉट बाय
0: कलर भी
1: थॉट
0: तो उसमें ऐड होता जाएगा,
1: ऐड
0: मेरा
1: होता
0: अपना
1: जाएगा. मैं
0: इमेजिनेशन.
1: जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट एक्चुअली हैपन,
0: ओरिजिनल,
1: इट्स
0: यस
1: डिफरेंट
0: यस
1: फ्रॉम द ओरिजिनल. सो इफ वी लुक एट इट दिस वे, तो फिर पास्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो बीता जब उसको दूसरी बार वर्णन किया वो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो एक्चुअली दिस इज अ न्यू प्रेजेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट. तो
0: एक्चुअली
1: लेट्स बी इन
0: आई
1: द
0: हैव मेड इट
1: प्रेजेंट.
0: प्रेजेंट, यू नो, सो व्हाई शुड वी मेक आवर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द पास्ट. यू नो वी कैन एक्चुअली, हाँ, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि पास्ट को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
1: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे
0: हर्ट
1: तो
0: उतना
1: वो
0: होगा.
1: हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सोल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते
0: नहीं
1: वो नहीं भूल जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूँ, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूँ. दर्द हील हो जाएगा वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माई पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स
0: और
1: बैक.
0: एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
1: बट
0: होता है.
1: देन दैट मीन्स इट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता, क्योंकि वहां भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला
0: अपने
1: हूँ,
0: आप को भी फॉरगिव नहीं
1: मैं
0: करूंगा.
1: जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें, जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते वो टाइम गैप कम होता जाएगा. इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊं, वो टाइम जो मुझे

0: लगेगा अपने आप को हील करने का, वो कम होता जाएगा, जितना वो कम होता जाएगा पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन.
1: इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे कि डेथ ऑफ माई वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumari में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है. और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है. सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है.
0: लेट्स सिट कंफर्टेबली. बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती. आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे. मेरे अंदर वो शक्ति है, आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड. दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तुम्हें खुद ही क्रिएट करती. जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया. आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है. एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया. आई कैन लेट देम गो. ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट स्पेस ऑफ माई माइंड. लेट देम गो so that I can be free and powerful. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. जैसे कि हमने ये रियलाइज किया कि खुशी का जो थॉट है, खुशी की जो फीलिंग है, वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ, तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ. तो लेट गो करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही उसे डिलीट करना है. अगेन ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है, तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है. एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें. आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: શ્રોતાઓ નમસ્તે. આચાર્ય વિનોબા ભાવે કે જીવની પર આધારિત પ્રેમપંથ અહિંસા કા ઇસ પ્રોગ્રામ મેં આચાર્ય વિનોબા ભાવે કે કરીબી શ્રી વસંતરાવ નાનાજી બુંબટકર ઇનકે સાક્ષાત્કાર કી દ્વિતીય કડી હમ સુનેંગે.
1: પ્રેમપંથ અહિંસા કા
2: કે જબ ભગવાન વિનોય કી ટોલી નિકલેગી તો ઉસકા વ્યવસ્થાપન મેં કરુંગા. સભા મેં ભાષણ દેને કા જિમ્મા મેરે થા કે વિનોબા જી નહીં રહેંગે લેકિન ભાષણ મેરા રહેગા. બડી કડી પરીક્ષા થી તો એ સર નિકલ પડે
3: વર્ધાને
2: કે ઉનકે ટોલી મેં ચાર પાંચ લોગ થે જય વિજય જ્યોતિ બાલ વિજય જય દે જો ઉનકે શરીર કા ખ્યાલ રખતે થે ઓર બાલ વિજય ઉનકા લેખને કા કામ કરતે થે દોનો સાથ મેં ઓર કો સુનતે દેશ મેં જે તીન ઉનકે પાર્ટી કા પ્રમુખ લોગ થે ઓર ઇસ સચ વો તીન ચાર લોગ એક ટોલી ઓર મેં અપના એક થા ઓર અપના જો મને વિનોબા બુલેટિન વાર્તા ઉસકા ભી એડિટિંગ સામે કા દોનો સમાને કા કામેરા થા તો પહેલે નિકલે યહાં સે પવના છે તો સુરગાંવ ને ગયે તો સુરગાંવ પહેલે ગ્રાંદા ફિર તો ખર્ચા જૈસે જૈસે ગયે વૈસે ગ્રાંદાન હોતે ગયા. ગ્રાંદાન કા મતલબ થા કે ગ્રાંદાન કૈસા આયા. વિનોજી જબ દિલ્હી કી તરફ જા રહે થે તો મંગળોઠ નામ કા ગાંવ થા વહાં કે લોકોને એસા કે વિનોજી ભૂદાંત માંગતે લેકિન મેં કહેતી સભી ભૂમિ ગોપાલ કી હૈ તક સબ સબ જમીન ભગવાન કી હૈ કિસી નહીં માલક કી. તો વહાં કે મહિલાઓને તય ક્યા કૈસા કહેતા હૈ કહેના હૈ તો હમ સબ જમીન ભૂદાન મેં દે દે અને મહિલાઓ કા નિર્ણય થા વહાં કે દિવાન સંસ્થાની ઉનકે પત્ની ઉસને લી લ્યા ઓર વિનોજી ન માગે ઉનકો ગ્રામદાન મિલ ગયા. આગા તબસે ગ્રામદાન કી ભૂમિ શરૂ ગયા. ગ્રામદાન મતલબ થા કે ગાંવ કે જો જમીન કે માલિક હૈ પચાતા હિસ્સા જી માલિક પચાતા હિસ્સા જમીન પડી દસ્તખત હો જાતે હૈ કે હમ ગ્રામ તબ ગ્રામદાન ના જાયગા. ગ્રામદાન કા મત કાય ક્યા હોગા આગે વહાં ગ્રામ સભા હોગી ઓર ગ્રામ સભા વહાં ગાંવ કે જો ભૂમિહીન હોગી ઉસને દૂસરા હિસ્સા ભૂમિહીનો કો દેગા બાકી જિન જિસકે પાસ ઉસકે પાસ રહેગી ઓર જો ગ્રામ સભા રહેગી ઓર ગાંવ કા પ્લાનિંગ કરેગી વિકાસ કા. તે બબા બેબુ બકા બારા કરીકે કે બાલક હૈ દેવા હૈ બુઢી હૈ મહિલા હૈ બીમાર હૈ ઇન લોકો કી ખ્યાલ વો ગ્રામ સભા રખે. ગ્રામ સભા ગ્રામ માતા બનેગી ઓર ગાંવ કે વિકાસ કા પ્લાનિંગ કરેંગે. ઇસ તરહ સે ભૂદાન કા બટર કા ગ્રામ કા યે વ્યવસ્થા એસી હોગી. તો એસા ચલતે ચલતે 27 મઈ કો આરવી તહેસીલ કે ગાંવ મેં દોપહર મેં હમ બેઠે થે વિનોજી કે સાથ. દોપહર મેં ગપશપ હોતી થી તો એકદમ વહાં સે કમલ લેન બજાજ ઓર કોમર્સ કોલેજ કે પ્રિન્સિપાલ શાહ આયે કાર લેકર કે નરેન્દ્રજી કા દેહાંત હો ગયા હૈ આપકે લિયે વાયુયાન આયા હૈ દિલ્હી મેં આપકો લે જાને કે નાગપુર ચલીએ. તો વિનોજી કહા કે ગાંધીજી ગયે થે ઉસ સમય થી એસે વાયુયાન આયા થા લેકિન ઉસ સમય મેં નહીં ગયા ઇસ સમય મેં મેં નહીં આઉંગા ઓર વો નહીં ગયે ઓર ઉનકી પદયાત્રા જારી રહી. તબ પ્રચાર હોને લગા દેખો કે વિનોજી કિતના ઘમંડ આદમી હૈ ઉધર નેહરુજી કી મૃત્યુ હો ગઈ લેકિન ઇસકો ઉસકા કોઈ દુઃખ નહીં હૈ યે ખુશહાલ વો મજે સે પદયાત્રા કર રહા હૈ એસા પ્રચાર મેં નામ નહીં લુંગા. એક પંચાયત સમિતિ કે સભાપતિને શરૂ ક્યા કેસા વિનોબા ઘમી યાદ નહીં થા. તો સભા જીમા તો નહીં રહેતા હર સભામાં જવાબ મેં કહે દેખો વહાં સિંહગઢ પર લડાઈ હોઈ તાના જ કટકર મર પડે તો સુરવાજી રોતે નહીં બેઠા મને કે સુરવાજી કે ચલો મને રસી કાઢી હૈ લડો લડે ઓર સિંહગઢ કાબી હોગા. અરે વહાં રોતે બેઠતે તો ક્યા હોતા સિંહગઢ મિલતા ક્યા અબ વહાં દિલ્હી મેં ક્યા હુઆ નહેરુ મરે પડે હૈ ઉનકા શો પડા હૈ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પ્રધાનમંત્રી બને તો રાસ્તા ચલાના થા કામ તો કરના હૈ. તો ઇસે મટકા ગુરુ હર રોતાલા ચેલા દોહો કા બહુ એસી કહા હોત હૈ જો ગુરુ મરતા હૈ સચ્ચા ગુરુ નહીં હૈ જો રોતા હૈ સચ્ચા શિષ્ય નહીં હૈ. તો એ ઢંગ સે કામ ચલેગા. ઓર એક બાત હૈ કે વિનોજી હમેશા કહેતે થે કે ચાઇના કા જો હમલા હુઆ ઉસમે ભારત કા જો યે હુઆ उसका सदना नैने जी को पहुँचा। तो ये शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। तो विचारों की लड़ाई सभी विचार देने से होता है। तो उनका जो विचार है, तो हमारा जो ग्रामदान ग्राम स्वराज का यह स्वाभाविक विचार है, इसको हमको चलाना है। और नैनो जी के इसलिए और ज़्यादा इसे ठीक से चलाना है। मैंने कहा ये भी नौ जी के विचार में सुबह मैं बोलता था। दूसरी दिन सभा में ये लोग कहने लगे, देखो संत आप आते हैं तो हमारे मन में उभर आता है और उसमें हम भावनावश होकर दान दे देते हैं। अब इस सब ग्रामदान में मांगी, क्योंकि ग्रामदान होते चले गए। क्योंकि आर्य देश में जैसे प्रवेश हुआ तो वहाँ रसूलाबाद में रचनात्मक संस्था का केंद्र था, वो ग्रामदान में आया। दूसरे दिन ने नांदुरा नारायण रकाड़ी MLA का गांव था, मैंने उनसे कहा देखो सुभाष बाबू थे, ICS थे, नेहरू थे, उनको हर कुछ मिलता था, लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए सब त्याग दिया। अब आप MLA, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका ग्रामदान होना चाहिए। तो नांदोड़ा MLA का ग्रामदान हो गया। फिर आगे गांव में हम पढ़े, वो था बड़ा गांव था, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का गांव था, वो ग्रामदान होगा, वो रहा क्या। अरे रचना काम का सेंट्रल ग्रामदान हुआ, MLA का ग्रामदान हुआ, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ग्रामदान विरूढ़ वो ग्रामदान हुआ, अरे पूरे आदि तहसील से ग्रामदान में आ गई थी। तो सब लोग उसमें हड़कंप मच गया कि अब क्या करें। उन्हें प्राइवेट मीटिंग ली कि इसको किस तरह से रोकना चाहिए, ये उनके उनकी मंशा थी। तो ये सिलसिला चलता ही हुआ। तो उन्होंने कहा देखो आप लोग गलत सुझाव दे रहे हैं, मानो कल चुनाव आए लोग कहेंगे कि आज ही वोट डाल के सोचेंगे, जरा विदेश में आज ही परीक्षा में पेपर को छोड़ेंगे और कभी देंगे तो कभी परीक्षा होगी, कभी चुनाव होंगे, ऐसा गलत प्रचार क्यों करते हो। तो भी प्रचार जारी था। फिर चौथे दिन मैं चिढ़ गया कि मैंने कहा कि आपको नेहरू जी के जाने का इतना दुख है तो होटल में आलू बोलने खाते पान ठेलो पान कर लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को रात को अपने औरत के साथ सोते समय। उस समय नेहरू जी का दुख आपको नहीं होता, शर्म नहीं आती आप लोगों को। मैंने आम समाज जोर से उनको तगड़ा जवाब दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया कि बोल चार दिन से आपका क्या चल रहा, ये क्या चल रहा था। तो जो आदमी प्रचार कर रहा था ऐसा उसको भी बोला और हम लोग को बोला और उन्होंने कहा कि उसको कहा कल से तुम मेरे सभा में नहीं दिखना चाहिए। तो और वो हमारा कार्यक्रम जारी रहा। फिर मैं यहाँ सामने की व्यवस्था के लिए एक दिन वर्धा आया था, वापस गया यात्रा पर, उसका जिम्मा था हर दिन डे मेरे ऊपर था, सब तरह के आते थे। तो सब लोग घबरा गए थे क्योंकि सामने वाले गांव से चिट्ठी आई थी बोलने आप हमारे गांव में मत आइए, हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। तब क्या करें, मैं वहाँ गया, मैंने पढ़ा गांव किनारा, वो किनारा वो गांव था जिस गांव में मैं एक महीना मुकाम किया था और पूरे तहसील में घूमता था और 3,000 एकड़ जब मिली थी। उस गाँव का नाम ना शिविर किनारा नाम रखा, इतने बड़ी शिविर लगी उस गाँव में लगातार महीना भर। तो मैं ये हो नहीं सकता, चीज गांव ने बंदर का इतना सम्मान किया और जब राम वहाँ आ रहा उसको लोग कैसे रोक सकते हैं। तो मैं वहाँ चला गया कि क्या बात है। वामन राव पाटिल उनके घर जहाँ मैं ठहरता था, तो मैं गए तो पूरा गाँव तो महीना में वहाँ घूमता था, परिचय कहा बूढ़े लोग आए जवान नाम साथी आ गया कि आ गए आ गए। तो मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मना क्यों करते हो। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई है, उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे इतने प्रकार के अत्तर चाहिए, इतने प्रकार के साबुन चाहिए, इतने प्रकार के पेय चाहिए, इतने प्रकार के फल चाहिए, जितने चैन विलास की चीज़ें थी वो सब चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब एक जिम्मा था जिला परिषद ने जिम्मा लिया था व्यवस्था का, वो जिला परिषद किसी आदमी ने इस तरह से लिख दिया था, उन्होंने मेरे पास चिट्ठी, मैंने वो चिट्ठी लिखी, मैंने फाड़ के फेंक दिए थे। हाँ मैंने कहा मैं एक महीना आपके गांव में रहा, घूमता रहा आपके साथ, मैंने कभी भी कोई एक बात आपसे मांगी, ये हमारी मांग नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कल इनवा इस गांव में आएगा आपके माई है तो पेड़ है मैं जानता हूँ, मैं वो बड़े पेड़ के नीचे हम उतरेंगे और सार्वजनिक कुआ है उसका पानी पियेंगे, क्या उस पेड़ के नीचे उतरने के लिए आपके मनाही है, क्या उस पानी का पहनने की मुझे आपकी मनाही है। लोग डोने लगे, आप मने करेंगे, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, तो क्या हमको रोकेंगे पानी पीने से, पे के इंजन से। फिर मैं वहाँ से सभा से उठकर घर के कहाँ चल, कहाँ चल, मैं काकू को नमस्कार करने के लिए जा रहा। मैंने कहा काकू कौन थी, जिसने महीना भर जब कभी मैं घूम कर आता रात को 10-12 बजे मैंने ताज़ा भोजन खिलाने मिलते, मैं उसका चरण वंदन करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसका चरण वंदन किया, कैसा है रोग ऐसा ऐसा, मैं कोई गाँव वाले ऐसा कह तू चिंता कर, मैं अकेले हुई ऐसा करूँगा मैं। अभी मैं वापस आया, मैं उन लोगों से कोई बातचीत नहीं, मेरे से एक बूढ़े आदमी थे, मैं वहाँ से वापस लौट गया। कोई बात नहीं क्यों थी व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, मुझे विश्वास है। मैं वहाँ चला आया, अच्छी व्यवस्था में इस तरह से पदार्थ में बातें होती रहे। अब यहाँ की बात वर्धन है, विनोबा है, अरे मैं नाम नहीं लूँगी कि उन्हें एक पुराने नेता को पत्र लिखा कि आपकी मेरी दोस्ती है, वो पुराने जमाने गांधी के ज़माने के आए थे, तो मैं आपके गांव में आऊँगा, मैं भूदान ग्राम ना कुछ नहीं मांगूँगा। तो उस आदमी ने जवाब कहता, जो आदमी ऐसा था कि जिसके बर्थडे पर गांव को भोजन मिलता था, ऐसी उसकी आर्थिक अवस्था थी, संतरी के बाग थी उसके, उसने कहा बिना आप मत आइए, आप बूढ़े हैं तो अपने साथ के दो लोगों के साथ खिलाइए, बाकी लोगों को मैं खिला नहीं सकूँगा। संसद से आगे क्या करें, मैं इतना टोली का इंतज़ाम करने वाला था। तो बंग साहब को मैंने कहा कि देखो मैं जाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि बिना आएगा और उस दिन नगद भोजन होगा, यानी वो तो बिना जी को खिलाने के तैयार है। मैंने कहा कि उसके साथ मैं उसके पूरे गांव को नगद भोजन दूंगा। तो बंग साहब ने कहा ऐसा मत करो। मैंने कहा कि ना ऐसा करेंगे, उसको भी जरा नसीहत देनी चाहिए कि इतनी उद्दंडता एक आदमी एक साथ करे, नहीं ऐसा मत। मैंने कहा उस गाँव में मैं नहीं आऊँगा, विनोबा जी के पद है था जो होगा तो मुझे तो मालूम होगा व्यवस्था तो अच्छी होगी। विनोबा जी कहते तो आदमी मिलने तक नहीं आया, वो ब्राह्मण पार्टी के नेता थे, गांधी जी का आश्रम भी यहाँ न हो यह उनकी तैयारी थी उन लोगों की, लेकिन जमनाल बजाज के कारण वो कुछ कर नहीं सके। ऐसा ही पहले ग्रुप था ब्राह्मणेतर लोगों का, ब्राह्मणों का देश करने वालों का। एक ही समय एक आदमी के पास मैं गया था, जयप्रकाश जी का यहाँ दौरा था, तो जाजू जी ने मैं किया उस वमेंद्र वसु के यहाँ जो जिला परिषद या जिला भूविकास बैंक के अध्यक्ष थे और यहाँ के नेता के नेताओं के नेता थे, तो मैं उनसे बात करने के लिए गया था कि कल जयप्रकाश जी यहाँ आएंगे आपसे बात करने के लिए। तो भला आदमी गांधी जी के जितने भी जाजी ने पूरे भारत में खादी भंडार खुलवाए हजारों, उनको गालियाँ देता था, गालियाँ, और कुमारप्पा जी उनको गालियाँ देता था, गालियाँ ही, और मनोहर जी दीवान क्या लेन देन है उनसे, उनको भी उन्हें पुलिस ही गालियाँ देता था। मैं बोलने की कोशिश करता बोल नहीं देता था, तो हमने कहा ये आदमी ऐसा है कि अच्छा, मैंने कहा गलत है झूठ है, मैंने उसके मुझे शब्द निकले पहले ही, मैंने भी अपना तोपखाना शुरू किया, गलत है झूठ है गलत है झूठ है, मैंने अपना मारा शुरू किया। मैंने कहा देखो अब कल जयप्रकाश जी आए थे क्या करें, बोले सुई के नोक पर मिलने इतने भी जमीन मैं नहीं दूंगा बोले। मैंने कहा आपने महाभारत पढ़ा होगा, ऐसा किसने कहा था, उसका नतीजा क्या हुआ, निकाल दिया रहा उसके घर के बाहर। मैंने कहा उसके क्वेश्चन मत कि मैं खुद जाता हूँ, लेकिन मेरा शब्द ख्याल में रखो कि जिस दुर्योधन का सुख के जमीन दे उसका आश्रय क्या हुआ, आप सोचे जा रहे इस पर। और ईश्वर भी वर्धन है विनोबा जी के साथ। एक बार 1757 में प्लासी के लड़ाई में भारत के हार हुए अंग्रेजों के साथ, 1857 में भी हम सफल नहीं हुए, अब 1957 भूमि क्रांति करेंगे, विनोबा जी नारा लिया। अब क्या करें, वड़ेगांव भंडारा जिले में वहाँ हमने सम्मेलन लिया पूरा कि 57 की क्रांति को सफल मनाने क्या करना है, तो वहाँ प्रस्ताव आया कि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के जेल में साल साल दो दो साल तक कार्य करता रहे, अब हमारे कि भूमि क्रांति का साल है, युद्ध क्रांति का साल है, तो हम भगवान का जेल समझकर एक साल भर घर में नहीं जाएंगे, कोई घर में नहीं जाएगा, पूरे साल भर में इधर में भूमि क्रांति को बल देने के लिए घूमेंगे। निर्णय हुआ, जिले जिले में प्रचार हुआ। हमारे संयोजक था तो भंडारा जिले में 50 लोग निकले, जो घर में नहीं जाएंगे। नागपुर में, वर्धा जिले में 50 लोग निकले। एक बांध के किस्सा है, सभा हो रही थी, लोग निकल रहे थे। एक वहाँ के कार्यकर्ता ने साल भर से निकलने का वादा किया और वो टोली में आने लगा, तो पीछे से उसकी पत्नी आ गई, उसके लपेट के उसके कमर में। वो आगे बढ़ा, वो पीछे खींच रहे, कहाँ जा रहे, बोले नेरल में बड़को का क्या इंतजाम है। तो इसे वो तमाशा गाँव वालों ने देखा कि 50 को वो अपने विचार आने की कोशिश कर, पत्नी पीछे खींच भेजे। तब मैंने उसको समझा, देखो यहाँ आना हो तो अच्छा, ना आना तो इतना तो कर सकते हो कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ केवल भूदान की बात करना, शादी में जाओ कहीं नहीं जाओ, बस हो गया तुम्हारा एक साल का। तो इस तरह से वर्धा जिले में 57 लोग निकले, यवतमाल जिले में निकले, अकोला जिले में निकले, नहीं करीब करीब 250 लोग निकले पूरे विदर्भ में। तो उस समय में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने पूरे घूमते घूमते सभा करना, और मेरा तो निर्णय था पहले से कि सभा में जब तक भूदान नहीं मिलता तब तक मेरी सभा खत्म नहीं होती थी। कंधे पे कंबल रहता था, एक बार झोड़ा रहता था, अरे बंग साहब बोले तू कैसा है, बोले मैंने कहा मैं या मरना बेहतर तो समझता, बिछाने पर मुझे आराम नहीं मिलता था। तो मैंने अपने कार्यकर्ता देखो इसी को कंबल अपने ले लो, सैला ले लो। मैं करास करने लगा नदी, तो मेरे जीती उन्होंने उठाए, इसने उन्होंने मेरी पूरी यानी हिफाजत की कि जरा भी तकलीफ न हो। तो इस तरह से भारत में जो कहीं ना हुआ वो सब इस इधर में हुआ, क्यों इन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल था। एक बार विनोद जी ने ऐलान किया कि देखो जी भारत में एक दिन में होली होती है, एक दिन में दिवाली होती है, ऐसे भूदान में मिली जमीन एक दिन में क्यों न बांटी जाए। हमने वो नारा उठा लिया, उन्होंने भूदान समिति मीटिंग बुलवाई सबकी। उसने संत टुकड़े जी महाराज आए थे, प्रमुख कार्यकर्ता आए थे। मैंने इच्छा रखे गए हमको ये संकल्प करना है कि एक दिन में जितने भूदान जमीन विदर्भ में एक दिन में बांटने चाहिए सबको। आश्चर्य कैसा था, मैंने कहा ये संभव है, मैंने हो सकता है, मैंने कहा कि आप जुम्मा लेते। मैंने हाँ मैं भी जुम्मा लेता हूँ, आप पूरी शक्ति मुझे दीजिए आपकी। तो मैंने लिस्ट तैयार की किस गांव में कितनी ज़मीन बांटनी है, तो कम से कम एक आदमी को 5 एकड़ चाहिए, तो 5 एकड़ के ऊपर जितनी ज़मीन बटनी जिस गांव में है उन सब गांव में हम बंटवारा करेंगे। और फिर कार्यकर्ताओं के जिम्मे काम बांट दिया कि कौन से गांव में कितनी ज़मीन बटनी है। और बंटवारे का ट्रेनिंग देने के लिए 40 जगह मैंने शिविर लिए। एक्चुअल जमीन का बंटवारा कैसा करते हैं, जमीन का बंटवारा करने का तरीका यह है, गांव की आम सभा बुलाना और आम सभा में कौन भूमि है ना उनके नाम मंगवाना, फिर कितनी ज़मीन बंटने की है वो ज़मीन का, 3 लोगों को जमीन बांटनी है, 5 नाम आ गया, अब क्या करें, कार्यकर्ता ज़मीन नहीं बांटेगा, वो 5 लोग एक जगह बैठेंगे और उस लोग अपना विड्रा करेगा, मेरे पास जमीन तो मैं विड्रा करता हूँ, लेंगे 4, अब क्या करें, अब गोटियाँ डालेंगे 4, जो 3 दिन के नाम लेंगे उसको जमीन मिलेंगे। अब कोई पक्षपात नहीं, पैसा नहीं, पूरे विदर्भ में इसे ट्रेनिंग शिविर लिया, उनको उन गाँव का जिम्मा दे दिया। साल भर में एक दिन 2 अक्टूबर का दिन तय था गांधी जयंती का, तो 1100 गाँव में जमीन बटी एक दिन में। हमने निश्चित ही की जन आंदोलन कार्यकर्ता जमीन नहीं बांटेगा, अब जनता जमीन बांटेगी। अब हमारा पड़े कैसे हुआ, जैसे जैसे विनोद जी जो जो भी जिम्मा दिया वो करके बताया।
0: लास्ट में जैसे कि विनोबा की जैसे समाधि की ओर जब विनोबा चले तो उस समय क्या परिस्थिति थी?
2: वो कई सालों से हमारे मन की तैयारी कर रहे थे और नागदेव ने समाधि ली, जब मैं मरूंगा तो क्या तुम हंसते हंसते मुझे विदाई करोगे कि नहीं, आप मेरी विदाई करोगे, वो बार बार कर रहे 2-3 साल पहले। इसका अर्थ कि उनके मन में चल रहा था कि हम, और बाद में वो कहते मेरा कर्तव्य संपल, माझे कर्तव्य संपले, उन्हें कहने का मुझे करना था किया और समाप्तम कहने का मतलब था उनका, और उस मानसिक अवस्था में थे।
0: देह त्याग दिया विनोबा ने, तो उस समय आपको कैसा लगा या क्या फीलिंग थी और आश्रम के जो निवासी है उनकी, कि अब तो विनोबा जी चले गए आश्रम का कैसे होगा, या ऐसे कुछ प्रश्न उभर कर आए?
2: ऐसा है कि विनोबा जी ने जब ब्रह्म विद्या मंदिर शुरू किया तो उसके बाद 12 साल के बाद आए थे, उनके पीछे 12 साल तक वहाँ आश्रम चलता रहा।
0: जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विनोबा की समाधि के समय आश्रम की स्थिति क्या थी?
2: तो विनोबा जी के आखिरी दिन थे जब मैं लगा था, जो बीमार थे और उनका अंश शुरू हो गया था। बंक साहब ने मुझे संदेश भेजा खेती पर, अरे आओ ना, विनोबा जी की आखिरी घटी ये अवस्था है। तो मैंने अपने खेत को छोड़कर, मेरा संकल्प तीर्थ हो गई थी, 3 साल भी होते आए थे, मैं वहाँ गया और देखा विनोबा जी का आखिरी साथ चल रहा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन विनोबा जी ने तो मना की कि रोता चेला। तो मुझे तो बाद में मैंने अपने एक इसमें लिखा है, पत्र लिखा है बाद में, कि आपके साथ आने से मेरी जो मूल की प्रवृत्तियाँ थी उसको एक निष्ठा वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त हुआ। जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन ये बड़े आंसू है, ये कमजोरी के नहीं है, ये कृतज्ञ के है। आपके अब तक देखिए मैंने जो कृतज्ञ है और मेरी जो कमजोरी मेरे मुझे में कि मैं आप काम को नहीं पूरा इसके लौटता हूँ, ऐसा मैं उनको पता रखा। वही पत्र हमने गांधी जी को भी लिखा, मैंने मैं क्या रखा कि आपके काम आपका काम करने के लिए मैं अपने को कमजोर पाता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं लौखा हो गया इसमें मैं घूमना बंद हुआ, नहीं तो आप देखते कि आप मुझे मैं गढ़चिरौली में होता, हड़गांव में घूमता, इन नक्सलियों के गढ़ों में घूमता, मैत्री यात्रा निकालने का मैं था, लेकिन मैं चल नहीं सकता वही खबर में, भोजन के भी मैं जल, लेकिन क्या करें मैं खामोश हूँ, लिखता भी नहीं, वो किताबें लिखी है, क्योंकि मेरा निर्णय मेरा यह था, संकल्प था, और जो मैं वही लिखूँगा जो मैंने किया है। मेरे लिखने में एक शक्ति थी, उसके एक फॉलोइंग थी उसके, अब आज मैं कुछ निकल नहीं पाता इसलिए लिखता भी नहीं। किताब लिखी है अभी, किसान गीता। पहले मैंने सोचा था कि मैं किसान 21 सदी का किसान वेद लिखूं, मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भ मेरा कार्यक्षेत्र है और यह आत्महत्या हो रही है, और किसान को वेद सिखाने की जरूरत, किसान को गीता सिखाने की जरूरत है। जैसे कृष्ण ने 5 पांडवों को लड़ाई के लिए खड़ा किया, किसानों को किसान के बेटों को लड़ाई के लिए खड़ा करना है, उसके लिए किसान किताब किताब मैंने लिखी थी, लिखी अब प्रकाश होनी है, उसका रिश्ता मैं नहीं करूँगा। पवनार में कभी जाता हूँ, कभी सेवाग्राम जाता हूँ तो मन रोता है, वहाँ का वैभव मैंने देखा है पहले का, और अब आज की स्थिति मैं देखता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैं तो वहाँ से यकीनन कहता हूँ, मैंने एक सभा में जब ठीक ठाक कहा था, मैंने एक बैठक में, यदि मैं चंगा होता तो शंकर का तांडव नृत्य क्या है ये विदर्भ में देखा होता, एक दिन चौपाई या वाहन इस सड़क से गुजरने के साथ था, ये किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरा किसान रास्ते पर खड़ा होता, लेकिन अब क्या करें, मेरा संगठन नहीं, मेरे भंडारा के साथी की मृत्यु हो गई है, नागपुर के साथी की मृत्यु हो गई है, यवतमाल के साथी की मृत्यु हो गई है, अकोला के साथी की मृत्यु हो गई, आखिर करेंगे किसके बोलो। एक दिन बंक साहब मुझे यहाँ मिलने के लिए आए, पुनः पेटू या आयुष्याचा मशाले, अरे फिर से अपन खड़ा करेंगे, वो हमेशा रहते, उनका मारा रिश्ता ऐसा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ बंक साहब और जहाँ बंक साहब वहाँ मैं हूँ, हम दोनों को प्रधान के क्षेत्र के राम लक्ष्मण कहा करते थे। मैंने कहा कि देखो बंक साहब, अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपका आवाज़ 10 लोगों तक नहीं पहुँच सकता, आप चल नहीं सकते थे, और वर्धा जिले के हमारे जो साथी थे आर्मी के बाबा राव झाड़े हमारे सरदार वो नहीं रहे, हिंगन घाट के जो देशपांडे थे वे नहीं रहे, वर्धा के जानराव राव थे वे नहीं रहे थे, सरजा बड़े थे नहीं, हमारे पाँचों भी सेनापति थे, कोई जिंदा नहीं है, वही स्थिति, और आपकी और मेरी जो हालत है वह अपने जमाने के लोगों की, अब किसके बल पर हम लड़ेंगे, लड़ना तो चाहते हैं लेकिन किसके बल पर लड़ेंगे, जो गुजर गए मैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इस आदमी में ताकत थी कि वो पूरे विदर्भ को खड़ा कर रहा।
0: जी, हमें भी आपके साक्षात्कार से बहुत सारी प्रेरणा मिली है, और हमारे जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी यह साक्षात्कार निश्चित ही मार्गदर्शक रहेगा कि उस समय की परिस्थितियाँ और उनसे आपने जो जो दो दो हाथ किए उस समय की सारी बातें सारा घटनाक्रम इस साक्षात्कार के माध्यम से रेडियो एमगिरी के माध्यम से हमारे वर्धा हमारे पूरे भारत के सामुदायिक रेडियो से लोगों तक पहुँचेगा। यही एक संदेश है। दूसरा, आपकी दीर्घायुष्य के लिए हम हमारी रेडियो एमगिरी और हमारे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की ओर से शुभकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायुष्य मिले और इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपने साक्षात्कार दिया इसलिए रेडियो एमगिरी की ओर से मैं आपका धन्यभागी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस धारावाहिक में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंत नानाजी बोंबटकर इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी सुनी। यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इतिहास के सफ़ों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: श्रोत्यो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो. दोस्तों, क्या आपने कभी उस पतंग को देखा है जो हवा के सहारे उड़ते उड़ते नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती है? जमीन पर खड़े लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि पतंग को भी शायद यह लगने लगता है कि अब वह इस धरती को धूल से बहुत ऊपर उठ चुकी है. लेकिन जैसे ही उस पतंग की डोर किसी पेड़ में उलझती

या हवा का एक विपरीत झोंका आता है, वहीं ऊंची उड़ने वाली पतंग सीधे जमीन की कटीली झाड़ियां और कीचड़ में आ गिरती हैं। ऊंचाई पर पहुंचना जितना मुश्किल होता है, वहां से गिरना उससे कहीं ज्यादा आसान और दर्दनाक होता है। अध्यात्म और साधना के रास्ते पर भी सबसे बड़ा खतरा यही होता है। जब थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा ध्यान या समाज में नाम मिलने लगता है, तो इंसान खुद को बहुत बड़ा पहुंचे हुए संत या सिद्ध मानने लगता है। कबीर साहब आज हमें साधना के इसी सबसे बड़े भीतरी खतरे यानी ऊंचाई से पतन की प्रति सावधान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश, कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश, उहां ही ते गिरी पड़या मन माया के पास। कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़ा आकाश, कबीर मन पंछी भया।

0: आवाज।
1: श्रोताओं, कबीर साहब मन के एक सूक्ष्म अहंकार और उसके धोखे को उजागर करते हुए कहते हैं, कबीर मन पंछी भया, साधना भजन और एकाग्रता के बल पर यह जो तुम्हारा मन था, यह एक पंछी यानी पक्षी की तरह हल्का होकर उड़ने लगा, बहुतक चढ़ा आकाश, और यह उड़ते उड़ते बहुत ऊंचे आकाश यानी समाधि ज्ञान और ध्यान के ऊंचे शिखरों तक पहुंच भी गया। इसे लगा कि इसने संसार और वासनाओं को सदा के लिए पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन फिर क्या हुआ? अगली पंक्ति में कबीर एक अत्यंत मार्मिक और चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। वहाँ हीते गिरी पड़ा, उसी परम ऊंचाई से जहाँ वह खुद को सुरक्षित मान रहा था, यह मन सीधे नीचे गिरी पड़ा, यानी औंधे मुँह गिर पड़ा। कहाँ गिरा? मन माया के पास, वापस उसी नश्वर माया यानी उस मान प्रतिष्ठा लालच वासना और अहंकार के पुराने दलदल में आकर फंस गया। यह दोहा योग के स्थान्युपन्न मंत्र समस्या कारण पुनर्निष्पर्शन पतंजलि योग सूत्र के नियम की व्याख्या करता है। जब साधक की चेतना ऊपर उठती है तो उसके भीतरी सिद्धियां, सम्मान और मैं ज्ञानी हूँ का एक बहुत बारीक अहंकार पैदा हो जाता है। जब तक अहंता की जड़ पूरी तरह नहीं कटी होती, तब तक माया कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी ऊंचाई पर घात लगाकर बैठी रहती हैं। कबीर समझा रहे हैं कि ऊंचाई पर पहुंच जाना ही मुक्ति नहीं है, उस ऊंचाई पर निरंतर निरहंकार और सजग बने रहना असली परीक्षा है। एक पल की लापरवाही या अपनी साधना का घमंड होते ही वह मन पक्षी से फिर वासनाओं की जमीन पर आ पटकता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद के भीतर इस सूक्ष्म अहंकार को टटोलिए। जब हम चार अच्छी बातें सीख लेते हैं, थोड़े धार्मिक हो जाते हैं या कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तो क्या हमारे भीतर दूसरों को तुच्छ समझने का भाव नहीं आने लगता? कबीर हमें बताते हैं कि हमें लगता है कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं और बाकी दुनिया अज्ञानी है। यही वह सूक्ष्म माया है जो हमें आकाश से जमीन पर गिरा देती है। आज कोशिश कीजिए अपनी साधना में विनम्र बने रहने की, ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने पैर जमीन पर रखिए। यह मत भूलिए कि जो कुछ भी मिला है वह सद्गुरु और उस परमात्मा की कृपा है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं। जब आप पूरी तरह सरल और निरंकारी होकर उस राम नाम की शरण में रहेंगे तो आपका यह मन कभी गिरेगा नहीं, बल्कि उस अनंत आकाश का ही रूप हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
2: आपन ट्यून केला है रेडियो मन भावन 90.8 FM अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आपली मानस।
3: एपिसोड नंबर 56। बात तथागता आरोपकर्ताओं के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ उदाहरणों के साथ नमूना पेश करते हैं। विपश्यना के कारण गति मंद होती है और वे अपने ही सीमित दायरे में रहते हैं। विपश्यना बाधक बनी रहती है गति और प्रगति में, परंतु यह दोष विपश्यना का है या गलत विपश्यनकर्ता का, यह नहीं देखा जाता विवेक से, न देखा किसी ने भी। सच तो विपश्यना यानी एकाग्रता, ज्ञान प्राप्ति की समाधि। एकाग्रता पूर्ण समाधि से ज्ञान प्राप्ति होती है और विचारों का विस्तार होता है, ऐसी सृजनात्मकता है विपश्यना में। विपश्यना ध्येय नहीं है, साधना है, मार्ग है। बहुत से यह भूल जाते हैं। विपश्यना से साध्य होती है कर्मकांड विरहित सम्यक समाधि, जिसमें होती है विवेक की चिकित्सा और प्रज्ञाशील करुणा। बाबा साहब अंबेडकर करते थे निरंतर 18 घंटे अभ्यास या 24 घंटों में से 21 घंटा अभ्यास। यह ज्ञान साधना की एकाग्रता, यह एक तरह की विपश्यना ही है। इनमें से ही विकसित हुई सम्यक समाधि। और दुखितों वंचितों के आंसू पोंछने की कार्य प्रवण करुणा विस्तार पाती रही बाबा साहब की। बाबा साहब शील को अत्यधिक महत्व देते थे। उनके चारित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी निंदकों की भी नहीं हुई आज तक। बाबा साहब की इस एकाग्रता में कर्मकांड नहीं, ना ही अंधश्रद्धा। कुछ नमूने विपश्यना में बैठते हैं आंख मूंदकर और मांगते हैं कल्पना के देवी देवताओं को, मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, हे ईश्वर मुझे बंगला दे दो, हे ईश्वर मुझे गाड़ी दे दो, हे ईश्वर मेरी यह बीमारी दूर कर दो। यह लालच भिखारी वृत्ति विज्ञान से कोसों दूर है। वैसे तो विशिष्ट प्रकार की देखने की दृष्टि से, निरीक्षण से ये पृथक होती है। इसी कारण ये नमूने बैठते हैं विपश्यना में, परंतु करते हैं कर्मकांड। बनी रहती है अंधश्रद्धा, बन जाते हैं धर्मांध। ऐसे नमूने विपश्यना के साधक कैसे होंगे? विपश्यना को नाम रखने वाले करते नहीं विपश्यना कभी भी। उनमें नहीं होती एकाग्रता। निरीक्षण के अभाव में बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए केवल अधिकार पाते हैं टीका टिप्पणी निंदा करने का, अविवेकी भाव से। बा तथागता ज्ञान संवर्धनार्थ तथा भय वृत्ति को दूर करने हेतु तूने निरीक्षण से एकाग्रता के लिए कहा, चित्त एकाग्रता के लिए। श्वास का बड़ा महत्व होता है। श्वास नाक से अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यह प्रक्रिया निसर्ग नियम के अनुसार संपूर्ण जीव सृष्टि में निरंतर चलती है। हवा आना और जाना, इस प्रक्रिया के साथ देखना क्रिया जोड़ने से शुरू होगी क्रिया एकाग्रता की, अर्थात समाधि। परंतु श्वास लेना और छोड़ना के अतिरिक्त देखने की क्रिया होती ही नहीं, इसीलिए अभाव है एकाग्रता का। इसीलिए निर्माण होता है अज्ञान, अंधापन और भयग्रस्तता बेसावत वृत्ति के कारण। नासिका द्वारा शरीर में पहुंचने वाली हवा ऑक्सीजन सप्लाई करती है। प्रत्येक पेशी इसी कारण जीवित रहती है। जिन पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, वह पेशी रोग धारण कर लेती है कर्क रोग सम। शरीर में प्रविष्ट प्रत्येक श्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है शरीर की चेतना के लिए, जीवित रहने के लिए। इस श्वास का निरीक्षण यानी शरीर के प्रत्येक बदलाव की नोन ज्ञानवर्धक। शरीर बना है पेशी पेशी के समुच्चय से और पेशी कण कण से, अणुरेणु से, परमाणु से, कायानुपश्यना शरीर का तटस्थता से संपूर्ण निरीक्षण आकलन के साथ। शरीर के बदलाव की संवेदना कैसी होती है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण एकाग्रता समाधि साधना से ज्ञात होता है। इस एकाग्रता का बोध अनापान सति से यानी श्वास।
0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आपली मानसर।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देख कर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे, ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है, आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेम्बर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over.
1: And what happens then after that?
0: Then the whole day is gone.
1: The whole day is gone.
0: No, I'm saying like it happens with a lot of.
1: Then the past becomes my present. Yeah. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार-बार कहते वो जो बीत गया, अब जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं, तो वो past ना रहकर, वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया, तो मेरा आज का दिन भी. सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इन टू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माई प्रेजेंट. तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना. पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली नथिंग टू डू विद द पास्ट, इट्स एक्चुअली बिकम माय प्रेजेंट. ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज है जहाँ हम ढूंढते, वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है. सो आई लुक फॉर हैप्पीनेस ईदर इन द पास्ट और आई एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन द फ्यूचर. आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफकोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं. तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए. हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे. तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं, लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हेयर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुराने वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं
0: आगे
1: आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में. जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट. इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ. इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना. सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 10:01. एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM
0: कि वहां तब क्या हुआ था.
1: यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03 एक्चुअली हो क्या रहा है, हर पल हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है. एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. सो बेसिकली एट एवरी मोमेंट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट विच इज नॉट इन माई कंट्रोल. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट,
0: तो वो जो वो प्लान भी बनाते हैं हम के दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर.
1: और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए, अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीजों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो मन जब भी कोई
0: लेकिन
1: ऐसी,
0: अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, यू नो, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी
1: डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इन टू द नेक्स्ट मोमेंट.
0: यस,
1: we already anticipate the more losses. इस moment में ताकत है हमारे अंदर situation को face करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ खत्म होती, जब हम अगले पल के बारे में fear create करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम meditation करते हैं, why does it benefit? Meditation हमें help करता है अपने mind की, you know, speed को, thoughts की speed को slow down करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल
0: किया
1: है. इफ एनी वन ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा. तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन की स्थिति कैसे होगी. इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें. एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो,
0: लुक एट,
1: चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद
0: से हम सीखते हैं,
1: सीखते हैं,
0: हिस्ट्री रिपीट्स
1: इटसेल्फ. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है. पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत उसको, याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. दीज आर आवर बिलीफ सिस्टम्स रिलेटेड टू द पास्ट. अब इन बिलीफ सिस्टम्स को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. लेट्स टेक द पास्ट व्हिच इज नॉट वेरी प्लेजेंट, देन वी विल टेक द पास्ट व्हिच इज प्लेजेंट आल्सो. अनप्लेजेंट पास्ट, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट from the family. So it could be small से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो past को revise करते हैं मन से या even अपनी conversation में, क्योंकि हमारी conversations में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई हुई बातों के बारे में होती.
0: Actually, वो हमेशा ही हमारा present बनता जा रहा है. जितना ज्यादा हम
1: absolutely. अब क्या हो रहा है, जैसे ही I am talking to you, let's say for example मैं आपसे बात कर रही हूँ about something which has happened with me. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, उनको लगता, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो उन. आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू. एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था. दिस इज माई बिलीफ सिस्टम. दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन. उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल टू थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. वन पर्सन, मैं कितना भी बोलूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज.
0: लेकिन सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो, इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है. आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो
1: लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा स्टेबिलिटी ऑलरेडी है. आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को, कोई भी, और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा?
0: वेरी ट्रू. यू नो, लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी कहीं
1: बहुत वो ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद खत्म करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माय एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बीइंग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया. अब मैं दिन में 4 लोगों को फोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ. वट एम आई डूइंग? द सीन इज लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. फ्यूटाइल. अब कई बार हम कहते हैं लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. इफ आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? दैट ऑल्सो भी नहीं, सीखने को जरूर मिलता, बट प्रोवाइडेड हमने उसको राइट पर्सपेक्टिव में लिया है. अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, आई एक्सपीरियंस्ड पेन, आई एक्सपीरियंस्ड हर्ट, बहुत कुछ हुआ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लो. अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम, दैट्स नॉट लर्निंग. एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग, जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर.
0: कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर, वट एवर.
1: सो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं वो मुझे मैन्युपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
0: मुझे क्यों कर पाते हैं ये देखना,
1: दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है? मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स व्हाई वी से राजयोगा मींस ब्रिंग द फोकस टू योरसेल्फ. वो ऐसे हैं वो, एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे? Not at all. I think, you know what I think? If I understand them well, then I will be safe.
0: Uh-huh.
1: No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे control में नहीं है. एक ही है जो मेरे control में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, it's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपने सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करे ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? एक लर्निंग हो सकती है कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज आवर वोकैबुलरी. तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट. नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट. सी ब्रिंग द फोकस टू माई सेल्फ. आने वाली हैं बहुत सारी बातें आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स. अच्छा कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का. आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड. सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग. वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई. अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स. अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं. यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती. तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता. तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी. एक्चुअली जितना याद रखोगे
0: उतना बार बार
1: वो बार बार होता जाएगा. यू सी आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे इंसल्ट, तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. And every time I get hurt very, very easily. अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि past repeat ना हो, तो actually उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन past repeat ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: We'll have to repeat,
1: you will have
0: delete.
1: To forget it totally. Forgetting the past is the only guarantee कि past repeat ना होगा. क्योंकि जितनी बार वो यहाँ repeat, यहाँ हो नहीं हो we don't know, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ repeat होता, वो already repeat हो चुका. जैसे आपने शुरू में ही कहा, past की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो repeat हो गया ना, the past has repeated itself. अगर सपोज मैं hurt हुई थी तभी या dejected feel किया, अब मैं जितनी बार उसको repeat करती हूँ, I again experience hurt, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न, वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया. तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माई थॉट्स, सो विल बी माई डेस्टिनी. तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूँगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूँगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, वो एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजी.
0: एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब.
1: आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टर.
0: और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते. हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती है, ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं,
1: क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है
0: और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे में क्या होगा,
1: क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी. अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को,
0: कई बार तो रुक जाती है मशीन.
1: नहीं,
0: हम तो
1: नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया. तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल लिटिल डिफरेंट. कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा.
0: तो वो मेरा कलर भी तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन.
1: मैं जितने लोगों के साथ बात करूंगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी. तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, इट्स नॉट दैट आई एम रिपीटिंग द पास्ट, इट्स एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई रिपीट इट्स डिफरेंट फ्रॉम what actually
0: the original, yes,
1: it's different yeah. from the original. So if we look at it this way, to for past ka to koi concept hi nahi hai. Jo bita, jab usko dusri bar varnan kiya, wo exact nahi hota hai. To actually this is a new present. I'm not talking about the past.
0: Actually.
1: Let's be in the present.
0: I made it a present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हमारी क्रिएटिविटी यहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन एक शिवानी बात ये रह गई कि past को हर्ट खत्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया.
1: हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता. तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से. तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा, हम उसको रिक्रिएट करते. तो यस, इट मे साउंड डिफिकल्ट, इट इज लिटिल चैलेंजिंग, बट सॉल्यूशन इज ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा. लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते, नहीं, वो नहीं भूला जाता. देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं. कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया. तो जो हमें एफर्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफर्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं. दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी. इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माय पेन. जब तक वो पेन खत्म नहीं होगा, और वो पेन तब खत्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूंगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में. तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके अपने हाथ में लेकर, जब हम अपने आप को हील कर लेते, देन पास्ट इज फॉरगॉटन. लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक.
0: और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है, हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा
1: है. बट देन दैट मींस इट इज ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड. सी, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, देन इट्स ऑफ द डिस्क, इट्स नो मोर देयर. अब आपने कहा, अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहां भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? वो तुरंत याद आया. लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई यू नो बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है. कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूंगा. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ.
0: मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूंगा,
1: मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ. सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है. आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में

0: अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे. इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे कि डेथ ऑफ माय वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, यू नो, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके ये दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पे भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में. तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumari में आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है. और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है. सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाए कि कैसे वर्क करना है.
1: लेट्स सिट कंफर्टेबली. बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था. और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती. आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे. मेरे अंदर वो शक्ति है, आई एम दैट पावरफुल बींग विच कैन स्टे स्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड. दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तो मैं खुद ही क्रिएट करती. जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर फॉरगिव दूसरों को नहीं, लेकिन फॉरगिव अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया. आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है. एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था, उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया. आई कैन लेट देम गो. ट्राई एंड सी ईच वन लीविंग दैट स्पेस ऑफ माई माइंड. लेट देम गो so that I can be free and powerful. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. But जैसे कि हमने ये realize किया कि खुशी का जो thought है, खुशी की जो feeling है, वो भी मैं create कर रही हूँ, मैं खुद ही create कर रही हूँ. तो इसका मतलब तो दर्द भी मैं खुद ही create कर रही हूँ. तो let go करना ही पड़ेगा. मुझे खुद ही उसे delete करना है. Again, ये करना मुझे है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी शक्ति भी देता है. तो उस शक्ति को हम क्यों जाने दें, हमारे अपने हाथ में है. एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, हमारे साथ शेयर करें. आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: श्रोताओं नमस्ते। आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस प्रोग्राम में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंतराव नानाजी बुम्बटकर इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी हम सुनेंगे।
1: प्रेम पंथ अहिंसा का
2: कि जब भगवान विनोबा की टोली निकलेगी तो उसका व्यवस्थापन मैं करूंगा। सभा में भाषण देने का जिम्मा मेरा था कि विनोबा जी नहीं रहेंगे लेकिन भाषण मेरा रहेगा। बड़ी कड़ी परीक्षा थी वो, तो इस तरह से निकल पड़े वर्धा में कि उनके टोले में चार पांच लोग थे, जय विजय ज्योति बाल विजय जय जय जो उनके शरीर का ख्याल रखते थे और बाल विजय उनका लेखने का काम करते थे, दोनों साथ में और को सुनते देश में जैसे तीन उनके पार्टी के प्रमुख लोग थे। और इस तरह से वो तीन चार लोग की टोली और मैं अपना एक था और अपना जो हमने विनोबा बुलेटिन वार्ता उसका भी एडिटिंग समय का दोनों संभालने का काम मेरा था। तो पहले निकले यहाँ से पवना से तो सुरगांव नहीं गए तो सुरगांव पहले ग्रामदान फिर जो खर्चा जैसे जैसे गए वैसे ग्रामदान होते गए। ग्रामदान का मतलब था कि ग्रामदान कैसा आया, विनोबा जी जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो मंगरोठ नाम का गाँव था, वहाँ के लोगों ने ऐसा कि विनोबा जी भूदान्त मांगते लेकिन मैं कहते सभी भूमि गोपाल की है, जगह सब सब जमीन भगवान की है किसी नहीं मालक की। तो वहाँ की महिलाओं ने तय किया कैसा कहता है कहना है तो हम सब जमीन भूदान में दे दें, यानी महिलाओं का निर्णय था। वहाँ के दीवान थे संस्था थे उनके पत्नी उसने ले लिया और विनोबा जी न मांगे उनको ग्रामदान मिल गया आगा। तब से ग्रामदान की भूमि शुरू हो गया। ग्रामदान का मतलब था कि गांव के जो जमीन के मालिक है वो 75% मालिक 75% जमीन पड़ी दस्तखत हो जाते हैं कि हम ग्राम तब वो ग्रामदान नाम जाएगा। ग्रामदान का मत क्या क्या होगा आगे वहाँ ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा वहाँ गांव के जो भूमिहीन होगी उसने दूसरा हिस्सा भूमिहीनों को देगा बाकी जिन जिसके पास उसके पास रहेगी और जो ग्राम सभा रहेगी वो गाँव का प्लानिंग करेगी विकास का। तो बबा बेबू बका बारा करके कि बालक है देवा है बूढ़ी है महिला है बीमार है इन लोगों की ख्याल वो ग्राम सभा रखेंगे। ग्राम सभा ग्राम माता बनेगी और गांव के विकास का प्लानिंग करेंगे। इस तरह से भूदान का बंटवारे का ग्राम का ये व्यवस्था ऐसी होगी। तो ऐसा चलते चलते 27 मई को आर्वी तहसील के गांव में दोपहर में हम बैठे थे विनोबा जी के साथ, दोपहर में गपशप होती थी तो एकदम वहाँ से कमल नैन बजाज और कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल शाह आए कार लेकर कि नवरत्न जी का देहांत हो गया है आपके लिए वायुयान आया है दिल्ली में आपको ले जाने के नागपुर चलिए। तो विनोबा जी ने कहा कि गांधी जी गए थे उस समय भी ऐसे वायुयान आया था लेकिन उस समय मैं नहीं गया इस समय में मैं नहीं आऊँगा और वो नहीं गए और उनकी पदयात्रा जारी रही। तब प्रचार होने लगा देखो कि विनोबा जी कितना घमंडी आदमी है, उधर नेहरू जी की मृत्यु हो गई लेकिन इसको उसका कोई दुख नहीं है ये खुशहाल और मजे से पदयात्रा कर रहा है ऐसा प्रचार मैं नाम नहीं लूँगा एक पंचायत समिति के सभापति ने शुरू किया कैसा विनोबा घमंडी आदमी था। तब सभा जिम्मा तो नहीं रहता हर सभा में जवाब मैंने कहा देखो वहाँ सिंहगढ़ पर लड़ाई हुई ताना जी कटकर मर पड़े तब सुरवा जी रोते नहीं बैठे मैंने कि सुरवा जी कहा चलो मैंने रस्सी काट दी है लड़ो लड़े और सिंहगढ़ काबिज होगा। अरे वो वहाँ रोते बैठते तो क्या होता सिंहगढ़ मिलता क्या अब वहाँ दिल्ली में क्या हुआ नेहरू मरे पड़े हैं उनका शव पड़ा है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो रास्ता चलाना था काम तो करना है। तो इसे मटका गुरु और रोता वाला चेला दोहो का बहुत ऐसी कहावत है जो गुरु मरता है वो सच्चा गुरु नहीं है जो रोता है सच्चा शिष्य नहीं है। तो इस ढंग से काम चलेगा। और एक बात है कि विनोबा जी हमेशा कहते थे कि चाइना का जो हमला हुआ उसमें भारत का जो ये हुआ उसका सदना नैने जी को पहुँचा। तो ये शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। तो विचारों की लड़ाई सभी विचार देने से होता है। तो उनका जो विचार है, तो हमारा जो ग्रामदान ग्राम स्वराज का यह स्वाभाविक विचार है, इसको हमको चलाना है। और नैनो जी के इसलिए और ज़्यादा इसे चिस्सी से चलाना है। मैंने कहा ये भी नौ जी के विचार में सभा मैं बोलता था। दूसरी दिन सभा में ये लोग कहने लगे, देखो संत आप आते हैं तो हमारे मन में उभर आता है और उसमें हम भावनावश होकर दान दे देते हैं। अब इस सब ग्रामदान में मांगी, क्योंकि ग्रामदान होते चले गए। क्योंकि आर्य देश में जैसे प्रवेश हुआ तो वहाँ रसूलाबाद में रचनात्मक संस्था का केंद्र था, वो ग्रामदान में आया। दूसरे दिन ने नांदूरा नारायण रकाड़ी एमएलए का गांव था, मैंने उनसे कहा देखो सुभाष बाबू थे, आईसीएस थे, नेहरू थे, उनको हर कुछ मिलता था, लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए सब त्याग दिया। अब आप MLA, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका ग्रामदान होना चाहिए। तो नांदोड़ा MLA का ग्रामदान हो गया। फिर आगे गांव में हम पढ़े, वो था बड़ा गांव था, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का गांव था, वो ग्रामदान होगा। अब रहा क्या, यानी रचना काम का सेंटर ग्रामदान हुआ, MLA का ग्रामदान हुआ, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ग्रामदान वीरूढ़ वो ग्रामदान हुआ, यानी पूरे आदि जिले के ग्रामदान आ गई थी। तो सब लोग उसमें हड़कंप मच गया कि अब क्या करें। उन्हें प्राइवेट मीटिंग ली कि इसको किस तरह से रोकना चाहिए, ये उनके उनकी मंशा थी। तो ये सिलसिला चलता ही हुआ। तो उन्होंने कहा देखो आप लोग गलत सुझाव दे रहे हैं, मानो कल चुनाव आए लोग कहेंगे कि आज ही वोट डाल के सोचेंगे, जरा विदेश में आज ही परीक्षा में पेपर को छोड़ेंगे और कभी देंगे, तो कभी परीक्षा होगी कभी चुनाव होंगे, ऐसा गलत प्रचार क्यों करते हो। तो भी प्रचार आजाद ही था। फिर चौथे दिन में चिढ़ गया कि मैंने कहा कि आपको नेहरू जी के जाने का इतना दुख है तो होटल में आलू बोलने खाते पान ठेलो पान कर, वो शर्म नहीं आती आप लोगों को रात को अपने औरत के साथ सोते समय, उस समय नेहरू जी का दुख आपको नहीं होता, शर्म नहीं आती आप लोगों को। मैंने आम समाज जोर से उनको तगड़ा जवाब दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया कि बोल चार दिन से आपका क्या चल रहा, ये क्या चल रहा था। तो जो आदमी प्रचार कर रहा था ऐसा उसको भी बोला, और हम लोग को बोला, और उन्होंने कहा कि उसको कहा कल से तुम मेरे सभा में नहीं दिखना चाहिए। तो और वो हमारा कार्यक्रम जारी रहा। फिर मैं यहाँ सामने की व्यवस्था के लिए एक दिन वर्धा आया था, वापस गया यात्रा पर, उसका जिम्मा था हर दिन डे मेरे ऊपर था, सब तरह के आते थे। तो सब लोग घबरा गए थे क्योंकि सामने वाले गांव से चिट्ठी आई थी बोलने आप हमारे गांव में मत आइए, हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। तो अब क्या करें, मैं वहाँ गया, मैंने पढ़ा गांव किनारा, वो किनारा वो गांव था जिस गांव में मैं एक महीना मुकाम किया था और पूरे तहसील में घूमता था, और 3000 एकड़ जब मिली थी उस गाँव का नाम ना शिविर को नाड़ा ना पड़ा, इतने बड़े शिविर लगे उस गाँव में लगातार महीना भर। तो मैंने कहा यह हो नहीं सकता, चीज गांव ने बंदर का इतना सम्मान किया और जब राम वहाँ आ रहा उसको लोग कैसे रोक सकते हैं। तो मैं वहाँ चल गया कि क्या बात है, वामन राव पाटिल उनके घर जहाँ मैं ठहरता था। तो मैं गए तो पूरा गांव तो महीना में वहाँ घूमता था, परिचय कहा बूढ़े लोग आए जवान हमारे साथी आ गए। तो मैंने कहा आप लोगों ने क्यों मना क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई है, उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे इतने प्रकार के अत्तर चाहिए, इतने प्रकार के साबुन चाहिए, इतने प्रकार के पेय चाहिए, इतने प्रकार के फल चाहिए, जितने चैन विलास की चीज़ें थी वो सब चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब एक जिम्मा था जिला परिषद ने जिम्मा लिया था व्यवस्था का, वो जिला परिषद किसी आदमी ने इस तरह से लिख दिया था, उन्होंने मेरे पास चिट्ठी, मैंने वो चिट्ठी लिखी, मैंने फाड़ के फेंक दिए थे। हाँ मैंने कहा मैं एक महीना आपके गांव में रहा, घूमता रहा आपके साथ, मैंने कभी भी कोई एक बात आपसे मांगी, ये हमारी मांग नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कल इनवाई इस गांव में आएगा आपके मनाई है तो पेड़ है मैं जानता हूँ, मैं वो बड़े पेड़ के नीचे हम उतरेंगे और सार्वजनिक कुआ है उसका पानी पियेंगे, क्या उस पेड़ के नीचे उतरने के लिए आपके मनाई है, क्या उस पानी का पीने की मुझे आपकी मनाई है। लोग डोने लगे, आप मना करेंगे, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, तो क्या हमको रोकेंगे पानी पीने से, पे के इंजेंस। फिर मैं वहाँ से सभा से उठकर घर के कहाँ चले, कहाँ चले, मैं काकू को नमस्कार करने के लिए जा रहा। मैंने कहा काकू कौन थी, जिसने महीना भर जब कभी मैं घूम कर आता रात को 10-12 बजे मैंने ताज़ा भोजन खिलाने मिलते, मैं उसका चरण वंदन करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसका चरण वंदन किया, कैसा है रोग ऐसा ऐसा, मैं कोई गाँव वाले ऐसा कह तो चिंता कर, मैं अकेले ऐसा करूँगा। मैं अभी मैं वापस आया, मैं उन लोगों से कोई बातचीत नहीं, मेरे से एक बूढ़े आदमी थे, मैं वहाँ से वापस लौट गया। कोई बात नहीं क्यों व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, मुझे विश्वास है। मैं वहाँ चला आया, अच्छी व्यवस्था में इस तरह से पदार्थ में बातें होती रहे। अब यहाँ की बात वर्धन है, विनोबा है, अरे मैं नाम नहीं लूँगी कि उन्हें एक पुराने नेता को पत्र लिखा कि आपकी मेरी दोस्ती है, वो पुराने जमाने गांधी के ज़माने के आए थे, तो मैं आपके गांव में आऊँगा, मैं भूदान ग्राम ना कुछ नहीं मांगूँगा। तो उस आदमी ने जवाब कहते, जो आदमी ऐसा था कि जिसके बर्थडे पर गांव को भोजन मिलता था, ऐसी उसकी आर्थिक अवस्था थी, संतरे के बाग थी उसके, उसने कहा बिना आप मत आइए, आप बूढ़े तो अपने साथ दो लोगों के साथ खिलाइए, बाकी लोगों को मैं खिला नहीं सकूँगा। संसद साहब के क्या करें, मैं इतना टोली का इंतजाम करने वाला था। तो बंग साहब को मैंने कहा कि देखो मैं जाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि इलाज आएगा और उस दिन नगद भोजन होगा, यानी वो तो इलाजों को खिलाने के तैयार है। मैंने कहा कि उसके साथ मैं उसके पूरे गांव को नगद भोजन दूंगा। तो बंग साहब ने कहा ऐसा मत करो। मैंने कहा कि ना ऐसा करेंगे, उसको भी जरा नसीहत देनी चाहिए कि इतनी उद्दंडता एक आदमी का साथ करे, नहीं ऐसा मत। मैंने कहा उस गाँव में मैं नहीं आऊँगा, विनोबा जी के पद है था जो होगा तो मुझे तो मालूम होगा व्यवस्था तो अच्छी होगी। वो विनोबा जी कहीं तक वो आदमी मिलने तक नहीं आया, वो ब्राह्मण पार्टी के नेता थे, गांधी जी का आश्रम भी यहाँ ना हो ये उनकी तैयारी थी उन लोगों की, लेकिन जमनाल बजाज के कारण वो कुछ कर नहीं सके। ऐसा ही पहले ग्रुप था ब्राह्मण लोगों का, ब्राह्मणों का आदेश करने वालों का। एक ही समय एक आदमी के पास मैं गया था, जयप्रकाश जी का यहाँ दौरा था, तो जाजू जी ने मैं किया उस वमंद्रा वसु के यहाँ जिला परिषद या जिला भूमिका बैंक के अध्यक्ष थे और यहाँ के नेता के नेताओं के नेता थे, तो मैं उनसे बात करने के लिए गया था कि कल जयप्रकाश जी यहाँ आएंगे आपसे बात करने के लिए। तो भला आदमी गांधी जी के जितने भी जाजू ने पूरे भारत में खादी भंडार खुलवाए हजारों, उनको गालियाँ देता था, गालियाँ, और कुमारप्पा जी उनको गालियाँ देता था, गालियाँ ही, और मनोहर जी दीवान क्या लेन देन है उनसे, उनको भी उन्हें पुलिस ही गालियाँ देता था। मैं बोलने की कोशिश करता बोल नहीं देता था। तो हमने कहा ये आदमी ऐसा है कि अच्छा, मैंने कहा गलत है झूठ है, मैंने उसके मुझे शब्द निकले पहले ही मैंने भी अपना तोपखाना शुरू किया, गलत है झूठ है गलत है झूठ है, मैंने अपना मारा शुरू किया। मैंने कहा देखो अब कल जयप्रकाश जी आए थे क्या करें, बोले सुई के नोक पर मिलने इतने भी जमीन मैं नहीं दूंगा बोले। मैंने कहा आपने महाभारत पढ़ा होगा, ऐसा किसने कहा था और उसका नतीजा क्या हुआ, निकाल दिया रहे उसके घर के बाहर। मैंने कहा उसके क्वेश्चन मत कि मैं खुद जाता हूँ, लेकिन मेरा बात सब ख्याल में रखो कि जिस दुर्योधन का सुख नोक पर जमीन दे उसका आश्रय क्या हुआ, आप सोचे जा रहे इस पर। और ईश्वर भी वर्धा में विनोबा जी के साथ एक बार 1757 में प्लासी के लड़ाई में भारत के हार हुए अंग्रेजों के साथ, 1857 में भी हम सफल नहीं हुए, अब 1957 है, अब 1957 में भूमि क्रांति करेंगे, फिर मुझे नारा लिया अब क्या करें। वड़ेगांव भंडारा जिले में वहाँ हमने सम्मेलन लिया पूरा कि 57 की क्रांति को सफल मनाने क्या करना है, तो वहाँ प्रस्ताव आया कि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के जेल में साल साल दो दो साल तक कार्य करता रहे, अब हमारे कि भूमि क्रांति का साल है, युद्ध क्रांति का साल है, तो हम भगवान का जेल समझकर एक साल भर घर में नहीं जाएंगे, कोई घर में नहीं जाएगा, पूरे साल भर में इधर में भूमि क्रांति को बल देने के लिए घूमेंगे। निर्णय हुआ, जिले जिले में प्रचार हुआ। हमारे संयोजक था तो भंडारा जिले में 50 लोग निकले जो घर में नहीं जाएंगे। नागपुर में वर्धा जिले में 50 लोग निकले। एक बांध के किस्सा है, सभा हो रही थी, लोग निकल रहे थे। एक वहाँ के कार्यकर्ता ने साल भर से निकलने का वादा किया और वो टोली में आने लगा तो पीछे से उसकी पत्नी आ गई, उसके लपेट के उसके कमर में। वो आगे बढ़ा, वो पीछे खींच रहे, कहाँ जा रहे, बोले नेरल में बड़कों का क्या इंतजाम है। तो इसे तमाशा गाँव वालों ने देखा कि 50 को वो अपने विचार आने की कोशिश कर, पत्नी पीछे खींच पीछे। तो मैंने उसको समझा, देखो यहाँ आना हो तो अच्छा, ना आना तो इतना तो कर सकते हो कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ केवल भूदान की बात करना, शादी में जाओ कहीं नहीं जाओ, बस हो गया तुम्हारा एक साल का। तो इस तरह से वर्धा जिले में 57 लोग निकले, यवतमाल जिले में निकले, अकोला जिले में निकले, नहीं करीब करीब 250 लोग निकले पूरे विदर्भ में। तो उस समय में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने पूरे घूमते घूमते सभा करना, और मेरा तो निर्णय था पहले से कि सभा में जब तक भूदान नहीं मिलता तब तक मेरी सभा खत्म नहीं होती थी। कंधे पे कंबल रहता था, एक बार झोड़ा रहता था, अरे बंग साहब अरे तू कैसा है, बोले मैंने कहा मैं या मरना बेहतर समझता, बिछाने पर मुझे आराम नहीं मिलता था। तब मैंने अपने कार्यकर्ता को देखो इसके कंबल अपने ले लो, थैला ले लो। मैं क्रॉस करने लगा नदी तो मेरे जूते उन्होंने उठाए, इसलिए उन्होंने मेरी पूरी यानी हिफाजत की कि जरा भी तकलीफ न हो। तो इस तरह से भारत में जो कहीं ना हुआ वो सब इस इधर में हुआ, कि इन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल था। एक बार विनोद जी ने ऐलान किया कि देखो दर्जी, तो भारत में एक दिन में होली होती है, एक दिन में दिवाली होती है, ऐसे भूदान में मिली जमीन एक दिन में क्यों ना बांटी जाए। हमने वो नारा उठा लिया, उन्होंने भूदान समिति मीटिंग बुलवाई सबकी। उसने संत टुकड़े जी महाराज आए थे, प्रमुख कार्यकर्ता आए थे, मैंने विचार रखे गए हमको ये संकल्प करना है कि एक दिन में जितने भूदान जमीन नहीं इधर में एक दिन में बांटने चाहिए सबको। आश्चर्य के कैसा समझने का ये संभव मैं हो सकता है, मैंने कहा कि आप जुम्मा लेते, मैंने हाँ मैं भी जुम्मा लेता हूँ, आप पूरी शक्ति मुझे दीजिए आपकी। तो मैंने ये लिस्ट तैयार की किस गांव में कितनी ज़मीन बांटनी है, तो कम से कम एक आदमी को 5 एकड़ चाहिए, तो 5 एकड़ के ऊपर जितनी ज़मीन बटनी जिस गांव में है उन सब गांव में हम बंटवारा करेंगे। और फिर कार्यकर्ताओं के जिम्मे काम बांट दिया कि कौन से गांव में कितनी ज़मीन बटनी है, और बंटवारे का ट्रेनिंग देने के लिए 40 जगह मैंने शिविर लिए। एक्चुअल जमीन का बंटवारा कैसा करते हैं, जमीन का बंटवारा करने का तरीका यह है, गांव की आम सभा बुलाना और आम सभा कौन भूमि है ना उनके नाम मंगवाना, फिर कितनी ज़मीन बंटने की है वो ज़मीन का, 3 लोगों को ज़मीन बांटनी है, 5 नाम आ गया, अब क्या करें, कार्यकर्ता ज़मीन नहीं बांटे, वो 5 लोग एक जगह बैठेंगे और उस लोग अपना विड्रा करेगा, अब मेरे पास जमीन तो मैं विड्रा करता हूँ, लेंगे 4, अब क्या करें, अब गोटियाँ डालेंगे 4, जो 3 दिन के नाम देंगे उसको जमीन मिलेंगे। अब कोई पक्षपात नहीं, पैसा नहीं, पूरे विदर्भ में इसे ट्रेनिंग शिविर लिया, उनको उन गांव का जमा दे दिया। साल भर में एक दिन 2 अक्टूबर का दिन तय था गांधी जयंती का, तो 1100 गांव में जमीन बटी एक दिन में। हमने निश्चित ही की जन आंदोलन कार्यकर्ता जमीन नहीं बांटेगा, अब जनता जमीन बांटेगी। अब हमारा अपने कैसे हुआ, जैसे जैसे विनोद जी जो जो भी जिम्मे दिया वो करके बताया।
0: लास्ट में जैसे कि विनोबा की जैसे समाधि की ओर जब विनोबा चले तो उस समय क्या परिस्थिति थी?
2: वो कई सालों से हमारे मन की तैयारी कर रहे थे और ज्ञानदेव ने समाधि ली, जब मैं मरूंगा तो क्या तुम हंसते हंसते मुझे विदाई करोगे कि नहीं, आप मेरी विदाई करोगे, वो बार बार कर रहे 2-3 साल पहले। इसका तो उनके मन में चल रहा था कि हम, और बाद में वो कहते मेरा कर्तव्य संपल, माझी कर्तव्य संपले, उन्हें कहने का मुझे करना था किया और समाप्तम कहने का मतलब था उनका, और उस मानसिक अवस्था में थे।
0: देह त्याग दिया विनोबा ने, तो उस समय आपको कैसा लगा या क्या फीलिंग थी और आश्रम के जो निवासी है उनकी कि अब तो विनोबा जी चले गए आश्रम का कैसे होगा, या ऐसे कुछ प्रश्न उभर कर आए?
2: ऐसा है कि विनोबा जी ने जब ब्रह्म विद्या मंदिर शुरू किया तो उसके बाद 12 साल के बाद आए थे, उनके पीछे 12 साल तक वहाँ आश्रम चलता रहा।
0: जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विनोबा की समाधि के समय आश्रम की स्थिति क्या थी?
2: तो विनोबा जी के आखिरी दिन थे जब मैं लगा था, जो बीमार थे और उनका अंश शुरू हो गया था। बंग साहब ने मुझे संदेशा भेजा खेती पर, अरे आओ ना, विनोबा जी की आखिरी घटी ये अवस्था है। तो मैंने अपने खेत को छोड़कर, मेरा संकल्प पूर्ति हो गई थी, 3 साल भी होते आए थे, मैं वहाँ गया और देखा विनोबा जी का आखिरी साथ चल रहा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन विनोबा जी ने तो मना ही कि रोता चेला। तो मुझे तो बाद में मैंने अपने एक इसमें लिखा है, पत्र लिखा है बाद में कि आपके साथ आने से मेरी जो मूल की प्रवृत्तियाँ थी उसको एक निष्ठा वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त हुआ। जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन ये बड़े आंसू है, ये कमजोरी के नहीं है, ये कृतज्ञ के है। आपके अब तक देखिए मैंने जो कृतज्ञ है और मेरी जो कमजोरी मेरे मुझे में कि मैं आप काम को नहीं पूरा इसके लिए होता हूँ, ऐसा मैं उनको पता रखा। वही पत्र हमने गांधी जी को भी लिखा, मैंने मैं क्या रखा कि आपके काम आपका काम करने के लिए मैं अपने को कमज़ोर पाता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं लौका हो गया इसमें मैं घूमना बंद हुआ, नहीं तो आप देखते कि आप मुझे मैं गढ़चिरौली में होता, हड़गांव में घूमता, इन नक्सलियों के गढ़ों में घूमता, मैत्री यात्रा निकालने का मैं था, लेकिन अब मैं चल नहीं सकता बोल खबर में, भोजन के भी मैं जल, लेकिन क्या करें मैं खामोश हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, किताबें लिखी है, क्योंकि मेरा निर्णय मेरा यह था, संकल्प था, और जो मैं वही लिखूँगा जो मैंने किया है। मेरे लिखने में एक शक्ति थी, उसके एक फॉलोइंग थी उसके, अब आज मैं कुछ निकल नहीं पाता इसलिए लिखता भी नहीं। किताब लिखी है अभी किसान गीता, पहले मैंने सोचा था कि मैं किसान 21वीं सदी का किसान वेद लिखूं, मेरी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भ मेरा कार्यक्षेत्र है और यहाँ आत्महत्या हो रही है, और किसान को वेद सिखाने की जरूरत है, किसान को गीता सिखाने की जरूरत है। जैसे कृष्ण ने 5 पांडव को लड़ाई के लिए खड़ा किया, किसानों को किसान के बेटों को लड़ाई के लिए खड़ा करना है, उसके लिए किसान गीता किताब मैंने लिखी थी, लिखी और प्रकाश होनी है, उसका रिश्ता मैं नहीं करूँगा। पवनार में कभी जाता हूँ, कभी सेवाग्राम जाता हूँ तो मन रोता है, वहाँ का वैभव मैंने देखा है पहले का, और अब आज की स्थिति मैं देखता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। नहीं तो वहाँ तो यकीनन कहता हूँ, मैंने एक सभा जब ठीक ठाक कहा था, मैंने एक बैठक में, यदि मैं चंगा होता तो शंकर का तांडव नृत्य क्या है ये विदर्भ में देखा होता, एक दिन चौपाई या वाहन इस सड़क से गुजर नहीं सकता था, ये किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरा किसान रास्ते पर खड़ा होता, लेकिन अब क्या करें, मेरा संगठन नहीं, मेरे भंडारा के साथी की मृत्यु हो गई है, नागपुर के साथी की मृत्यु हो गई है, यवतमाल के साथी की मृत्यु हो गई है, अकोला के साथी की मृत्यु हो गई, आखिर करेंगे किसके बोलो। एक दिन बंग साहब मुझे यहाँ मिलने के लिए आए, पुनः पेटू या आयुष्या मशादी, अरे फिर से अपन खड़ा करेंगे, वो हमेशा रहते उनका मारा रिश्ता ऐसा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ बंग साहब और जहाँ बंग साहब वहाँ मैं हूँ। हम दोनों को प्रधान के क्षेत्र के राम लक्ष्मण कहा करते थे, मैंने कहा कि देखो बंग साहब अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपका आवाज़ 10 लोगों तक नहीं पहुँच सकता, आप चल नहीं सकते थे, और वर्धा जिले के हमारे जो साथी थे आर्मी के बाबा रौजाड़े हमारे सरदार वो नहीं रहे, हिंगन घाट के जो दुष्पांडे थे वे नहीं रहे, वर्धा के जानरा वाले थे वे नहीं रहे थे, सरजा बड़े थे भी नहीं, हमारे पाँचों भी सेनापति थे कोई जिंदा नहीं है, वही स्थिति और आपकी और मेरी जो हालत है वो अपने जमाने के लोगों की, अब किसके बल पर हम लड़ेंगे, लड़ना तो चाहते हैं लेकिन किसके बल पर लड़ेंगे, जो गुजर गए मैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इस आदमी में ताकत थी कि वो पूरे विदर्भ को खड़ा कर रहा।
0: जी, हमें भी आपके साक्षात्कार से बहुत सारी प्रेरणा मिली है और हमारे जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी यह साक्षात्कार निश्चित ही मार्गदर्शक रहेगा कि उस समय की परिस्थितियाँ और उनसे आपने जो जो दो दो हाथ किए उस समय की सारी बातें, सारा घटनाक्रम इस साक्षात्कार के माध्यम से, रेडियो एमगिरी के माध्यम से हमारे वर्धा, हमारे पूरे भारत के सामुदायिक रेडियो से लोगों तक पहुँचेगा, यही एक संदेश है। दूसरा, आपकी दीर्घायुष्य के लिए हम हमारी रेडियो एमगिरी और हमारे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की ओर से शुभकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायुष्य मिले और इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपने साक्षात्कार दिया, इसलिए रेडियो एमगिरी की ओर से मैं आपका धन्यभागी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंथ अहिंसा का इस धारावाहिक में आचार्य विनोबा भावे के करीबी श्री वसंत नानाजी बोंबटकर, इनके साक्षात्कार की द्वितीय कड़ी सुनी। यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।